कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो दोस्त मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके सपने कार्यक्रम घर परिवार में, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें भी अक्सर ये इंतजार रहता है कि कब हम अपनी सखियों से ढेरों बातें करें, बहुत सी जानकारियां साझा करें, गीत और संगीत से अपनी सखियों का मनोरंजन भी करवाएं और कुछ ना कुछ खास भी जरूर रहे हमारी घर परिवार की रसोई में। तो सखियों, अपना साथ हमें यूं ही देते रहिए ताकि हमारा ये दोस्ती भरा सफर हमेशा अच्छे से गुजरे और रिश्ता चाहे कोई भी हो, हमारे हर रिश्ते में मिठास होना बेहद ज़रूरी है और हम में से हर कोई यही चाहता है कि हमारे हर रिश्ते में मिठास बनी रहे और कभी कड़वाहट ना आए, है ना। और परिवार भी तभी मजबूत बनता है जब उसमें हमेशा प्यार बना रहे। अगर हम चाहती हैं कि हमारे परिवार में हमेशा प्यार बना रहे, हमारे घर आंगन की बगिया हमेशा खुशियों से महकती और खिलखिलाती रहे, तो हमें इससे जुड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमें हमेशा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना है ताकि हमारा आपसी प्यार और बढ़े। साथ ही परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें बिताना है। अपने काम के तनाव से परिवार वालों को दूर रखना है और जो भी समय हमें अपनों के साथ व्यतीत करते हैं उसे हमेशा अच्छे से हंसते मुस्कुराते हुए व्यतीत करना है। अपने बच्चों को भी ये एहसास हमें नहीं होने देना है कि हम बहुत व्यस्त हैं या अपने बच्चों से ज़्यादा घुलने मिलने का समय हमारे पास नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए पर्याप्त समय हमें निकालना है, उनकी दिनचर्या के बारे में बात करनी है। कभी ये मौका नहीं देना है कि बच्चे हमसे बात करने के बजाय मोबाइल आदि से जुड़े रहें। और जब हम अपने परिवार में अच्छा तालमेल बिठाते हैं या खूब बातें करते हैं तो इससे हमारा खुद का तनाव भी कम हो जाता है। हर परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव भी हम सभी की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनों से दूरियां बना लें, बल्कि अपने परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए अपने बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों के साथ संयम और प्यार से हमें बर्ताव करना है ताकि हमारे रिश्तों की डोर हमेशा मजबूत बनी रहे और हमारा घर आंगन सखियों हमेशा खुशियों से महकता रहे। तो सखियों, बात जब अपनों की और अपनेपन की हो रही है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी करवाते हैं अपनी सखियों का मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम घर परिवार में, जहां अब हम बात करेंगे कि गर्मियों में अपनी त्वचा का ख्याल हम किस तरह से करें। गर्मियों में त्वचा की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेज धूप, पसीना, धूल और उमस से त्वचा तैलीय, बेजान, टैन हुई या मुहांसों वाली हो सकती है। अगर हमारी दिनचर्या सही हो तो हम अपनी त्वचा को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार रख सकती हैं। और त्वचा को सुंदर बनाने के लिए हमें अपनी त्वचा को अच्छे से साफ रखना है और उचित देखभाल भी करनी है। सबसे पहले तो हल्के जेल बेस्ड या फॉर्मिंग फेस वॉश से चेहरे को धोना है। इससे अतिरिक्त तेल और पसीना साफ होता है। चेहरे को अच्छे से धोने के बाद गुलाब जल का हमें इस्तेमाल करना है। ये टोनर का काम करता है, त्वचा को ठंडक देता है और त्वचा के रोम छिद्रों को संतुलित करता है। उसके बाद विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट वाला हल्का सीरम हमें लगाना है। इसे लगाने से हमारी त्वचा के दाग धब्बे कम होंगे और निखार और बढ़ जाएगा। सीरम लगाने के बाद लाइटवेट वाटर बेस्ड या जेल टाइप मॉइस्चराइजर हमें लगाना है और भारी क्रीम लगाने से बचना है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जो सबसे ज़रूरी स्टेप है वो है एक अच्छी सी सनस्क्रीन। SPF 30 या 50 प्लस वाला ब्रांड स्पेक्ट्रम यानी PA++++ का हमें इस्तेमाल करना है। घर से बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले हमें ये लगानी है और रात को सोने से पहले भी हमें अपना चेहरा अच्छे से धोना है। नाइट क्रीम या सीरम का इस्तेमाल करना है। चेहरे को तरोताजा

ताज़ा रखने के लिए 10 से 12 गिलास पानी हमें ज़रूर पीना है। नारियल पानी, सत्तू का शरबत, गाजर, आंवला और चुकंदर का शरबत भी चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक कारगर होता है। इसलिए गर्मियों में हमें ऐसे पेय पदार्थों को चुनना है जो हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में चार चांद लगा दें। हफ्ते में एक या दो बार हल्का स्क्रब या कोई बढ़िया सा मास्क हमें ज़रूर लगाना है। इसके अलावा कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने चेहरे पर निखार ला सकती हैं, जैसे कि ताज़ा एलोवेरा जेल हम लगा सकती हैं। इससे त्वचा चमकदार बनेगी और चेहरे को ठंडक भी मिलेगी। टैनिंग हटाने के लिए दही और बेसन का पैक बनाकर हमें चेहरे पर लगाना है। चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए हम मसूर की दाल को पीसकर साथ ही एक आलू और एक टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करके पैक का इस्तेमाल करें तो ये हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। तो सखियों, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमें गर्मियों में त्वचा संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और चेहरा चांद की तरह खिल जाएगा। तो इसी बात पर एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गीत और विज्ञापन के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपनी सभी श्रोता सखियों के बीच कार्यक्रम घर परिवार में, जहां अब हम बात करेंगे मसालों से संबंधित सौंठ के गुणों पर। सखियों, सौंठ सूखी अदरक का पाउडर है जो अदरक की जड़ को सुखाकर बनाया जाता है। ये आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली औषधि मानी जाती है। ताजी अदरक की तुलना में सौंठ की तासीर ज्यादा गर्म होती है, इसलिए ये ठंडी ऋतु कफ और वात संबंधी समस्याओं में विशेष रूप से उपयोगी है। अगर हमारा पेट अक्सर भारी रहता है, गैस बनती है, अपच होती है या भूख नहीं लगती, तो सौंठ आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। ये पाचन अग्नि को तेज करती है, भोजन को अच्छे से पचाती है और पेट की सभी गड़बड़ियों को दूर करती है। सौंठ कफ को पिघलाने का जबरदस्त काम करती है। जुकाम, गले की खराश, बलगम वाली खांसी और सर्दी जुकाम में सौंठ वाला गर्म पानी या चाय पीने से तुरंत राहत मिलती है। जोड़ों के दर्द के लिए भी ये रामवान औषधि है। गठिया, घुटनों का दर्द, कमर दर्द या मांसपेशियों में सूजन हो तो सौंठ के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दर्द और सूजन दोनों को कम करते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में थोड़ी सी सौंठ और हल्दी मिलाकर पीने से सुबह उठते ही हमें फर्क महसूस होता है। सौंठ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, वसा को कम करती है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि सौंठ की तासीर गर्म होती है। अगर किसी को पित्त की शिकायत है, गर्मी या एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसका सेवन कम करना है। और जिन्हें ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, उनके लिए जो सौंठ है वो औषधीय गुणों वाली है। तो सखियों, सौंठ के गुणों को जानने के बाद अब रुक करते हैं घर परिवार की रसोई में, जहां आज मैं बनाने जा रही हूं सत्तू का शरबत, जो कि गर्मियों के इस मौसम में एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है और बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक जग, उसमें डालेंगे सत्तू पाउडर जो कि भुने हुए चने को पीसकर बनाया गया है। फिर डालेंगे 3 गिलास पानी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा गुड़ और पुदीने की पत्तियां ग्राइंड की हुई, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च थोड़ी सी, चिया सीड्स 1 चम्मच पहले से भिगोए हुए। साथ ही इसमें डाल रही हूँ गोंद कतीरा जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद सखियों हमारा ये गर्मियों का स्पेशल स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक तैयार हो चुका है। तो बस अब इसे सर्व करेंगे, तो आप भी ज़रूर बनाइए, खुद भी इसका आनंद लें और मेहमानों को भी ज़रूर पिलाएं। और सत्तू के शरबत के बाद अब बात करते हैं मनोरंजन की, तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ सखियो समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 1000 वर्ष के लिए भारत की प्रेरणा का उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 76,443 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi has said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He was speaking at the Somnath Amrit Mahotsav in Gujarat.
1: Kartarpur corridor, Bauddh circuit ka vikas, inke jariye desh mein tirth kshetron mein aarthik gatividhiyan badi hain. सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है. आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से

चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूँ ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ, अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो। इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं, अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत।

0: दादी? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले। क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके, हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराएं, हमको लुभाएं। मन कहें क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है।

की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे। तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: योग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज़्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है शब्द।

आते रहेंगे, और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है, आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूँ, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं, और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें। 1, 2, 3, 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में BJP सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा।

0: निकालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एक क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहाँ विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा।

0: उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

केएल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: असली नकली, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के लिखा हुआ भी है ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, सबिता बैनर्जी और सीता की, फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: एक बेमिसाल शायर
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से
2: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को ना तो झुका सकती है और ना ही दबा सकती है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके खिलाफ एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज के हर वर्ग, खासतौर पर युवाओं को इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक 122 कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 31 को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें संलिप्त व्यक्तियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त भी की है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश का जीएसटी का पैसा रिलीज नहीं कर रही है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल को IGMC शिफ्ट करने का फैसला मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद लिया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसको लेकर गंभीर हैं और सभी संगठनों व लोगों से बातचीत करने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
3: जो KNH की बात है, डेंटल कॉलेज में शिफ्ट करना और डेंटल कॉलेज को वहाँ शिफ्ट करना है, इस सरकार के लेवल पे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके फैसला लिया गया है और विरोध लोग नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स ही विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। जिनको जो है घर से उठ के केवल मात्र वहाँ तक जाना पड़ता है, ये सरकार लेवल पे बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री इस पे गंभीर है और डॉक्टर्स की एसोसिएशन, नर्सेज एसोसिएशन, उनसे पुनः मीटिंग करके दोबारा विचार कर सकते हैं, कोई ऐसी बात।
1: चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तुनुहट्टी लाहड़ू मार्ग पर करकीरा के पास आज तड़के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे जबकि चालक मंडी जिले का निवासी था। ये पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे और मनाली से डलहौजी जा रहे थे। चंबा के आयुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि दुर्घटना के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी और घटना के तुरंत बाद बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिए गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
4: जी, आज सुबह चंबा पुलिस के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि रात में लगभग 3:30 बजे एक इनोवा व्हीकल तुनुहट्टी लाडू रोड के ऊपर ककीरा के समीप क्षतिग्रस्त हुई, जिसके लगभग 10 सवारियां शामिल थी, जिसमें से 6 लोगों की स्पॉट पे ही अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। बाकी जो 4 लोग हैं वो इंजर्ड थे, उनका प्राथमिक उपचार सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी में करने के बाद उनको आगे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया। जी, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, जो 6 डिसीज्ड हैं उसमें से 5 लोग जो है वो गुजरात के थे, एक व्यक्ति था वो मंडी का बताया गया है, साथ ही में जो चारों इंजर्ड हैं वो भी गुजरात के हैं।
1: प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्रों की जांच कल 12 मई को होगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: ये थे प्रादेशिक समाचार। अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है भारत का पेंशन परिदृश्य, कवरेज बढ़ाना, स्थिरता सुनिश्चित करना। वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
6: भारत ने निर्धारित लाभ पेंशन स्कीम से विविध अंशदायी फ्रेमवर्क में बदलाव किया है। इस बदलाव से अधिक वित्तीय स्थिरता, साझी जिम्मेदारी और लंबी अवधि की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। बढ़ती आयु और रोजगार के विविध तरीकों के साथ रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करना एक जरूरी जन नीति प्राथमिकता बन गई है। इस मामले में भारत की पेंशन प्रणाली समय के साथ काफी बदली है, जिसे लगातार नीतिगत फैसलों और संस्थागत सुधारों से आकार मिला है, जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ वाली व्यवस्था थी, वो अब एक बड़े फ्रेमवर्क में बदल गई है। इसमें अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंशदायी योजना और लक्षित सामाजिक सहायता शामिल है। अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वृद्धावस्था में आय सुरक्षा को सहारा देने के लिए प्रशासनिक कुशलता में भी सुधार हुआ है। भारत के पेंशन संरचना में अलग अलग तरह की स्कीमें शामिल हैं, जिन्हें जनसंख्या के अलग अलग भागों को आय सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इसमें अलग अलग भाग शामिल हैं जो अलग अलग वित्त पोषण प्रणालियों, पात्रता मापदंड और लाभकारी ढांचे के तहत काम करते हैं। पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली, जो सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय की गारंटी देती है। अंशदायी पेंशन व्यवस्थाएं, जिसमें व्यक्ति और नियोक्ता सेवानिवृत्ति बचत में अंशदान करते हैं। संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वैधानिक वेतन संबंधी स्कीमें, जो नियोक्ता और कर्मचारियों के अंशदान को जरूरी बनाती हैं। कर वित्त पोषित सामाजिक सहायता पेंशन उन बुजुर्ग, विधवा और कमजोर लोगों की सहायता करती है, जिनके पास आय के सीमित या कोई औपचारिक स्रोत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बजट से चलने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम से बदलकर अंशदायी और संशोधित व्यवस्था में बदल गई है। इनमें नेशनल पेंशन सिस्टम और हाल ही में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम शामिल है। हालांकि रक्षा पेंशन अलग प्रावधान के तहत जारी है। 1 जनवरी 2004 से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी एक निर्धारित लाभ डीए इंडेक्स्ड पेंशन प्रणाली के तहत आते थे। ये केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के तहत आता था, जिसे आमतौर पर ओपीएस के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से मिलने वाली गारंटी शुदा पेंशन के हकदार थे। पेंशन कर्मचारी का आखिरी वेतन और क्वालिफाइंग सर्विस के अवधि के आधार पर तय की जाती थी। राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अपने राज्य पेंशन नियमों के तहत आते थे, जो आम तौर पर इन्हीं नियमों पर आधारित थे। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नए लोगों के लिए ओपीएस बंद कर दिया और एनपीएस शुरू कर दिया है। ये एक तय अंशदान फ्रेमवर्क है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान देते हैं। एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नियमित, विनियमित और निगरानी करती है। ये स्कीम एक स्ट्रक्चर्ड और पोर्टेबल पेंशन सिस्टम के जरिए लंबे समय की सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ावा देती है। ये एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ्रेमवर्क की दिशा में राजकोषीय स्थिरता की भी सहायता करती है। अधिकतर राज्य सरकारों ने बाद में नए लोगों के लिए एनपीएस को अपनाया, हालांकि कुछ ने निर्धारित लाभ व्यवस्था जारी रखी। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। ये नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक विकल्प है, जो एनपीएस के तहत आने वाले पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, और जो एनपीएस के तहत ये विकल्प चुनते हैं। ये स्कीम एक अंशदायी ढांचे के तहत कार्य करती है, जिसमें

0: कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों का अंशदान होता है। यूपीएस का उद्देश्य सुनिश्चित और महंगाई से जुड़ी सेवानिवृत्ति आय देना है। ये लंबी आयु और आय के अनुमान से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करती है। इसे पीएफआरडीए विनियमित करता है और ये कुछ खास शर्तों के साथ मौजूदा और सेवानिवृत्ति दोनों कर्मचारियों पर लागू होता है। यूपीएस के तहत लाभ की पात्रता एक कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली हो। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मौत होने पर कानूनी तौर पर शादीशुदा पति पत्नी यूपीएस के तहत फैमिली पेंशन भुगतान के लिए पात्र हैं। हालांकि एनपीएस और यूपीएस दोनों का उद्देश्य भुगतान पेंशन देना है, लेकिन उनमें संरचनात्मक अंतर है। उदाहरण के लिए यूपीएस के तहत सरकार 10% के साथ साथ एक पूल कॉर्प्स में अतिरिक्त 8.5% अंशदान करती है।
1: आपने सुनी सामयिक चर्चा, विषय था भारत का पेंशन परिदृश्य।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया, कितना ही उबालो न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था, शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो, 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा, आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
4: ये क्या है इतना खराब दूध, ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
3: मैं नौकर को मना करता, वो कहती,
4: अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती, क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
3: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
5: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
3: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसके गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
5: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार 1-2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। ढाई सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था, लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
6: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे।
3: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
4: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
3: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
4: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ, खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
3: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
4: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
3: खिदमतगार से।

0: में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाएगी जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया में इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना ज़रूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा।
0: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जिसे गवानकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फ़ायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगी। पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली एक कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाजी रही है।
1: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी, वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
0: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है दे रहता है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफ़ेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना ज़रूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी ही बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना ज़रूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं AB, AB या O, वैसे ही हमारे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है,
0: ओहो,
1: और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक आध ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहाँ पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
0: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
1: यदि सक्सेसफुल हो गया तो
0: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
1: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है, इसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाला है उसे भी अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीज़ों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में ही लगता है, बाद बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज़ होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया एक किस्सा। जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शंस का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहाँ पे। तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है, तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी, जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है। ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयाँ लगती है जो लोहों को कम करने के लिए ज़रूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे, ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफ़ी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट्स से काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज़्यादा है।
0: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में, और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से, किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है?
1: ज़रूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए, एक जानना ज़रूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है, अगर इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज़ बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है, अगेंस्ट थैलेसीमिया करके एक है, एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बम्बई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
0: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
1: जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बनाने जो है मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकेंड टायर सिटीज में ही सिर्फ देखी जाए।

0: जाती है वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोह कम करने की दवाइयाँ होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीज़ों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहाँ तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज़ आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है, जेनेरिक दवाइयाँ जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध हैं?
0: दुर्दैव की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयाँ चल रही है इसमें ज़्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से होता है, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना जेनेरिक्स बनाते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियाँ हैं इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप दिखा जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: कि वे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हर एक की लड़ाई है, हर एक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से, मैं सुनना चाहूंगा।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम?
1: देखिए कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है।
0: जी
1: मेन ये चीज़ सीखना ज़रूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना। अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहाँ पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रैटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है।
0: जी,
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है।
0: जी
1: तो ये
0: जी
1: एक दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है।
0: जी
1: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, अगर वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नज़र में?
1: देखिए कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो आप लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेडक्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशंस पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपल्सरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपल्सरी कही गई, तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं, तो
0: उसकी
1: वो
0: इंडिविजुअलिटी को
1: इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त पे उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर। वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे, ये ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ ज़रूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
1: देखिए अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाए जा रहा था। एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोग पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना ज़रूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मराइटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
0: वो
1: जिसमें आप

0: जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा, अगर समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये हमें जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्डिंग टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज़्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है, और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे ज़रूर रोक सकते हैं। तो आप ज़रूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे ज़रूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वेस्ली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा,

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की आश्वस्त आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधान

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकट काल के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात 76.78% रहा। किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरक शामिल किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपये का हो गया है, वहीं रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 में देश में लगभग 350 स्टार्टअप थे, लेकिन आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। पुदुचेरी में बुधवार को एनडीए नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली 8वें स्थान पर है। दोनों ही टीम के लिए ये मैच प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल व साथियों की आवाज़ों में गाया ये भजन भजन गैर फिल्मी। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

भजन गैर फिल्मी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाया ये भजन।

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गाए इसी भजन के साथ हमारा आज का भजन गैर फिल्मी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन गैर फिल्मी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा टेक्नोलॉजी और युवा।

कार्यक्रम युवा मंच के सभी श्रोताओं को, हमारे प्यारे युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, फिर एक नए सुहानी शाम के साथ हम हाजिर हो गए हैं लेकर एक नई जानकारी जिसका विषय है टेक्नोलॉजी और युवा। जी हाँ युवा साथियों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। वैसे तो हमारे युवा साथी बहुत ही होशियार हैं, वो हर चीज़ के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि हम हर रोज़ आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं कुछ नया। तो आज भी हम यही विषय आपके लिए लेकर आए हैं, इस पर हम जानकारी साझा करेंगे। लेकिन ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और युवा। आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। लोग टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो गए हैं कि इसके बिना रह ही नहीं पाते। प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसने संचार और परिवहन को तेज और आसान बनाकर जीवन को आसान और बहुत आरामदायक बना दिया है। इसने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। प्रौद्योगिकी ने को छोटा और रहने के लिए बेहतर जगह बना दिया है। प्रौद्योगिकी के बिना मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना एक कठिन कार्य होगा। प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले मनुष्य अभी भी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा था। हालांकि टेक्नोलॉजी के साथ जरूरतों की पूर्ति आसान और तेज हो गई है। ये अकल्पनीय है कि तकनीक के बिना जीवन कैसा होगा। जी हाँ युवा साथियों, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। बाकी की जानकारी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

inspiration built

कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं और विषय है टेक्नोलॉजी और युवा। जी हाँ दोस्तों, अब ये अकल्पनीय है कि तकनीक के बिना जीवन कैसा होगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, सोशल मीडिया में लोगों के बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। दोस्तों, समाज पर अगर हम टेक्नोलॉजी के प्रभाव की बात करें तो हम आप और सभी अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग और उस पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का उपयोग मनुष्यों द्वारा अन्वेषण, कनेक्ट, अध्ययन करने और काम करने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, वे निर्णय लेता है कि इसके प्रभाव समाज के लिए फायदेमंद हैं या हानिकारक। टेक्नोलॉजी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। युवा साथियों, ये हम पर निर्भर करता है कि कितना उपयोग हमें इसका करना है और कितना नहीं। सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो बेहतर संचार, बेहतर शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया, कोई भी सूचना प्राप्त करने में सरलता, ज्ञान का वैश्वीकरण, बेहतर समाजीकरण, बेहतर सुलभ शिक्षा, ये सब टेक्नोलॉजी के सकारात्मक प्रभाव हैं। युवा साथियों, जानकारी अभी जारी है, लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

युवा साथियों, पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में और आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और युवा। तो जब हम इसके नकारात्मकता की बात करें तो बेरोजगारी में वृद्धि, प्रदूषण में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य और मानसिक चिंताओं में वृद्धि, ये सारे जो हैं ये टेक्नोलॉजी के नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ग्रह पर मौजूद हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों हैं, यही बात टेक्नोलॉजी पर भी लागू होती है। इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कुछ नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बेरोजगारी में वृद्धि की अगर हमने बात की है तो आजकल बड़े और छोटे व्यवसाय कम लागत और उच्च दक्षता के कारण मशीनरी और तकनीक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण में बढ़ोतरी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तकनीक भी हमारे पर्यावरण पर असर डाल रही है। वाहनों और मशीनरी के कारण प्रदूषण की दर लगातार बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग आदि का कारण बनती है। स्वास्थ्य और मानसिक चिंताओं में वृद्धि की अगर हमने बात की है तो आजकल प्रौद्योगिकी मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। ये लोगों को आलसी, भावनात्मक रूप से कमज़ोर, नींद की समस्या, शारीरिक गतिविधि कम कर देता है। साथ ही लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ कम समय बिता रहे हैं। युवा साथियों, कार्यक्रम के अंत में हम तो यही कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का आप उतना ही उपयोग करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो बल्कि स्वास्थ्यवर्धक हो। अब खड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोच को ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले बताना चाहेंगे कि इस जानकारी वर्धक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह। और अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए। आज्ञा लेने से पहले कहना चाहूंगी कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं अगले कार्यक्रम में, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। जानकारी का विषय था टेक्नोलॉजी और युवा। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सदाबहार संगीत।

शाम 6:30 का प्रसारण समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां दा। इसमें आज लोकगीतों के साथ कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग विषय पर जानकारी साझा की जाएगी। शाम 7:10 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें जल संरक्षण तकनीकें विषय पर आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी, साथ ही साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब रस रात्रि 8 प्रसारित किया जाएगा। देशगान आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे संगीतकार मनन भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। हिमाचली गीतों व लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 से रात्रि 11 तक हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंद गीत हमारे आकाशवाणी शिमला से। शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 व रात्रि 11 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके खिलाफ एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये अभियान एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
1: प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शन

0: डिमांड रिडक्शन तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 3600 पंचायतों में से 234 पंचायतों में चिट्टा के सेवन करने वाले पाए गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक 123 कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 31 को बर्खास्त कर दिया गया है।
0: जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 है, जेएसबी आईपीएच के 9 है, जो यहां आर्मी और नेवी में काम करते रहेंगे उनके 8 है, एचआरटीसी के 8 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 है। टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल है, जब उनकी एडमिशन होगी, हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में चिट्टा मुक्त अभियान का दूसरा चरण 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 47 नगर निकायों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। सोलन नगर निगम की कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया और रोड शो के माध्यम से वोट की अपील की। विनय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत होगी।
2: डिफरेंट वार्ड में जाने का मौका मिला तो अच्छे पोजीशन में है और लगभग हम 10 से 11 वार्ड यहाँ जीत रहे हैं। हमारे उम्मीदवार है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से चुनाव को लड़ रहे हैं।
1: उधर कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने दावा किया है कि नाहन क्षेत्र की चारों जिला परिषद सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। वे आज नाहन क्षेत्र के त्रिलोकपुर और बनकला वार्ड से पार्टी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने के अवसर पर बोल रहे थे। पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार 4 लाख पेंशनरों के पेंशन व भत्ते जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी व अन्य भत्ते नहीं दिए गए हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों व पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में वित्तीय प्रबंधन चरमरा गया है और महंगाई भत्ते की 15% किश्तें लंबित पड़ी हैं।
3: 16 से लेकर 2021 तक लोग सेवानिवृत्त हुए, उनकी आज दिन तक लीव इन कैशमेंट, उनकी ग्रेच्युटी, उनके जो ड्यूज थे, सरकार ने नहीं दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार पैसे के फजूल खर्ची कर रही है, ये सारे का सारा पैसा प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों का है। इस सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन वो इस तरह से चरमरा गया है कि इस सरकार को यही समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या और क्या नहीं करें। एचआरटीसी के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ बैठे, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। आई कितनी हो गई आप।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात अंधड़ सहित बारिश, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। ऊना जिले में तूफान के कारण बिजली के 886 ट्रांसफार्मर ठप्प हो गए हैं, जिससे कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: किसी को

बता नहीं पाए, वफा करके भी हम निभा नहीं पाए। आप तो चले गए हमें रुलाते हुए, हम ऐसे गम में भी आपको भुला नहीं पाए।

एसपी बाला सुब्रमण्यम व लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना 100 डेज फिल्म का ये गीत। सदाबहार संगीत आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से।

अभी आपने सुना ज्वेल थी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में। सदाबहार संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना अनाड़ी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। सदाबहार संगीत आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

वंदिनी फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का सदाबहार संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राई दियां सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू दी तरफा दे राम राम। किसान साथियों टियाले पर अज मुझे सोगी पंच दा पंच जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम सुना कर दे सारे ही श्रोतियां जो भी पंच दी तरफा दे राम राम। दिखा हाँ जेड़ा से टियाले पर हाजिर हो गए और साढ़े जेड़े किसान भाई न सिंझा दी बेला जेड़े से अमड़े कमा कारा ते जेड़े से बेले हुई के सिंझा दी

0: बेला जेह्ड़े से इक जगह जेह्ड़े से कट्ठे होंदे न साढ़े घर ग्रां बिच्च, और जियां कि सानी कुछ एक दुकानां होंदियां चौराहे पर या कुत्थी टियाला होंदा ते उत्थूं
1: बिल्कुल
0: आई के
1: बिल्कुल
0: कठरूंदे न। उस पूरे दिन दी जेह्ड़ी ऐसे चर्चा होंदी कि अज हाँ क्या क्या कम्म कार जेह्ड़े से खेती बाड़ी दे कीते न, और अगे आने वाले जेह्ड़े कम्म कार न से अहाँ कियां करने न, है ना
1: बिल्कुल, क्योंकि गल वहाँ जियां ये बेला होंदा ना, थोड़ा ठंड का बेला भी होंदा है,
0: जी।
1: और अगर खेती बाड़ी च ज़्यादा काम होए तो किसान सोचता कि ठंड के अहाँ कमाई भी लीए, लेकिन जियां ही थोड़े दिन अहाँ मतलब खेती बाड़ी के बेले होंगे तो जियां कि कुछ की टियाला हो गया, जियां तुम बोला दे कि कुछ की भी बहनते हैं और अपनी जी गप्पा शप्पा कहने भी लगाते हैं कि भी हाँ खेत खलियान क्या किया और अगे हाँ क्या करना है, तो इस देखे होंगे कि जी जल वहाँ एक दूजे कहने अपने अनुभव जो साझा करते हैं तो इस दे सजो जी मती सारी चीज़ा कहने भी सीखने मिलती हैं, है ना।
0: बिल्कुल बड़का चाची, और कन्नै कन्नै दिक्खा तो हाँ दे निचले क्षेत्रां च तां जेह्ड़ी कनका दी जेह्ड़े कम्म ऐ सै साढ़े किसान भाइयें लगभग लगभग निपटाई ते है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और जेह्ड़े साढ़े पहाड़ी क्षेत्र ने जियां कि पालमपुर है अपना, योल है, इसते इस साइड चली जा तो सियुंता बगैरा, इन पहाड़ी क्षेत्रां च हले भी कुदी कुदी जेह्ड़ी इसे कनक कट्टने ओह् कन्नै थ्रेसिंग करने जेह्ड़ी इसे बची, और काफ़ी किसान भाई जेह्ड़े इसे अपने खेत्तरां जेह्ड़े इसे जुटे हुए इन्हें दिनों च, है ना।
1: बिल्कुल, कहने देखा कि बिच जड़ा मौसम भी खली बली मचा करता, लेकिन संजो मौसम जो भी ध्यान च रखी करी अपने काम काज करने ने, और जल वहाँ अपने खेती बाड़ी जो काम काज कर दें तो संजो जड़े अपने प्रबंधन कहने भी सारे रखना चाहिए, जी कि अगर कणक की कटाई करते अगर बरखा लगी पैंती है तो जी तरपाल वगैरह का प्रबंधन होना चाहिए,
0: जी
1: और इस दे अलावा जी दिखा कि यहाँ गलबात जो दिखते कि जल वहाँ एक किसान अगर बेला हो जाता, दो किसान बेले हो जाते हैं और ग्रां से चार किसान खेती बाड़ी जी काम काज करते हैं तो एक दूजे ने जी मदद कहन भी कर देना, और ये चीज़ा समझो अपने ग्रां च कहन भी दिखने मिलती हैं ना।
0: बिल्कुल, और अहाँ दे पिछले कल भी जड़ी इसे राती बारिश हुई है ना
1: बिल्कुल जी
0: काफ़ी, ता
1: बिल्कुल
0: इस बीच जेड़े से किसान भाई पहले ते अलर्ट न और जागरूक न कि हाँ जेड़े से अपने कम कार जेड़े से किस तरह निपटाने न, और जेड़े साढ़े फसलों च जियाँ कि सब्जियां दे उगा करते अजकल साढ़े किसान भाई अपने खेतरां च, ता तिन्हां जो जेड़े से बारिश कुथी ना कुथी वरदान भी साबित हुआ करती है ना,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उन्हें जो अपने खेतरां जेड़े से सेड़ वगैरह लगाने की या पानी का प्रबंध करने की जरूरत नहीं पो करती, और दुए चौथे जी इसे बारिश उगा करती है।
1: बिल्कुल, कहने दिखा पंच जी कि मते सारे असद जेड़े क्षेत्र हैं जेड़े कि बरखा पर ही निर्भर हैं, है
0: जी
1: ना, और जी कि अगर जेड़े क्षेत्र बरखा पर निर्भर हैं तो तेना वास्ते बरखा भी ठीक भी है, और जी कि उन्हें सब्जी वगैरह लगाई है तो उन्हें जो मतलब पानी की जी समस्या होंगी तो तिना दिन निजात के भी मिला करती है।
0: जी जी और इस दे कन्ने कन्ने साढ़े जेड़ा देखा तो हाँ हुण चरी बाजरा हुई या मक्का हुई या इन्हां दी बिजाई भी जेड़ी ऐसे अगेती बिजाई जेड़े ऐसे हुण साढ़े किसान भाई ती बिजाई करने दी तैयारी पूरी पूरी है, खेतरां जो तैयार कर करदे उत्थों जेड़े से देसी खाद पा करदे, और जल हाँ अगेती ये ना हरा चारा बीजी देना, तो इसते क्या होंदा कि सांजो समय रहिंदे जेड़ा से हाँ दे पशुओं जो खासकर जेड़े दूध देने वाले ने
1: जी जी
0: तिन्हां
1: जी
0: जेड़ा से हरा चारा उपलब्ध हो जाता, और उसते जेड़ा से उन्हां दा दूध दा उत्पादन जेड़ा से बढ़ी जाता है ना।
1: बिल्कुल, कहने देखा कि आशा दा जड़ा किसान साथी के अभी कृषि विभाग कहने भी जुड़िया विज्ञान का कहने भी जुड़िया, और जल उपजिया से एक फसल जो लेंदा था जरूर अपने जेड़े विचार विमर्श कहने भी विज्ञान का कहने कर दें कि जेड़ा भी यहाँ इबे लगाया था उसकी जेड़ी उत्पादन कदे आ रहा, तो जे जरूर सलाह मशवरा कर देने डॉक्टर कहने विज्ञान का कहने कि हूँ अगला हाँ इस तरह की खेती बाड़ी करने या मक्का लगाने या फिर धान लगाने का समझो इन्हों क्षेत्रा च कौन किस्म का जरा बी के भी लगाना चाहिए, और मैं तो ये समझदा हाँ ये समझदन कि ये जी सलाह मशवरा करना बड़ा भारी जरूरी है जल वहाँ फसल जो लगाते हैं, क्योंकि बोलते ना कि बीज ही फसल का जरा मुख्य आधार है ना,
0: जी जी
1: अगर
0: जी
1: हाँ बीज ठीक लगेंगे तो ता ही साड़ी जी फसल के भी उदा जरा उत्पादन के भी बांका निकलना है मतलब।
0: बिल्कुल, तुहाड़े बोलने का मतलब कि अहाँ का बीज जेड़ा से स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे किस्म का होना चाहिए, और कन्ने ही इसका बीज जल वहाँ खेतर च लगाना था उससे पहले बीजोपचार भी जेड़ा से बड़ी एक भूमिका अपनी निभाता है कि आने वाली फसल जेड़ी इस साड़ी किस तरह रहनी है ना,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: बिल्कुल
0: हाँ अपने बीज जो बीजोपचार करके था तो इससे साड़ी फसल जेड़ी से रोग मुक्त होनी है, और कन्ने कन्ने ही दिखा बड़का चाचू जी इन्हें दिनों जेड़ा से साड़े खेत भी जेड़े हूँ खाली हो कर दें, तो अहाँ जो कन्ने कन्ने साड़ी मिट्टी जेड़ी है इसका भी जेड़ा से प्रशिक्षण जेड़ा से परीक्षण जरूर करवाई लेना चाहिए, जिसी अहाँ जियाँ कि सॉयल हेल्थ कार्ड जेड़े साड़े किसान बनाए न,
1: बिल्कुल
0: इस
1: बिल्कुल
0: बीच जेड़ा इस दे अनुसार समय समय पर यानी कि 3-3 साल के अंतराल पर जेड़ा से अहाँ अपनी मिट्टी की जाँच जेड़ी से जरूर करवाई लेन।
1: बिल्कुल।

0: किसान साथियों, असा लोक गीत सुनिया और उसके बाद कुछ एक संदेश सुने न।
1: जी
0: देखा किसान साथियों की जी जी बोलिया वक्त बदलाउंदा ना, तो तीं तीं जिहड़े खेतीबाड़ी दे तरीके कहन बीज से भी बदलाउंदे न, है ना।
1: हाँ जी
0: साढ़े बुजुर्ग जी खेतीबाड़ी करते था उस टाइम अलग तरीके से खेतीबाड़ी दे, और जी जी बोलिया समय बदलाउंदा गया तो तीं तीं खेतीबाड़ी दे तरीके भी बदलाउंदे गए न।
1: बिल्कुल बड़े चाचू जी, जियां कि साढ़े पिछले साढ़े बुजुर्ग जेड़े इनसे बल्द रखे होंदे थे और साढ़े
0: बिल्कुल
1: आला होंदियां हियां, फिर मईये होंदे थे, जुंगले होंदे थे, इन्हां सारी चीज़ां जो इकट्ठा करके जेड़ा से अपनी खेती बाड़ी जेड़ा से अच्छे ढंग कन्नै पारंपरिक तरीके कन्नै करदे थे, है ना।
0: बिल्कुल कहने दिखा कि मुझे आज भी से टाइम याद आता है पंच जी की, जियाँ कि ग्रां च जियाँ लोहारा की दुकान होंगी, है ना। तो
1: हाँ
0: जालू जियाँ हूँ जियाँ फसल ले ली है लैना भी लगे, जियाँ ये क्या बोलते कणक हो गया जौ दी, हूँ अगली फसल दी हाँ बिजाई करनी है जियाँ मक्की दी।
1: जी
0: तो उस टाइम क्या होंगे कि अपने साढ़े जेडे संदर साज होंगे थे, जियाँ हल हो गई जुंगड़ा हो गया, है
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ जी
0: तो इन्हें जो हाँ बड़े मतलब अगर कोई ऐसी वैसी कमी तो इन्हें जो हाँ मतलब लोहारा बल लेके बढ़ाते थे, उन्होंने ठीक कराते थे ताकि जियाँ कि भाई असा बढ़िया तरीके कने अपनी खेती बाड़ी काम का काम कहने भी करी सकन।
1: थोड़े बोलने मतलब कि साढ़े जेड़े हल लोहालू होंदा ना,
0: जी जी जी
1: सह
0: जी
1: जालू हाँ काफ़ी टाइम तक हल चलांदे ते तिस ते से घसी जांदा ते तिस जो फिर इसते तेज कराने वास्ते जेड़े से अपने जेड़े
0: जी जी
1: तेज
0: जी
1: करने
0: जी
1: वाले होंदे ते तू ले के
0: लोहारा
1: जांदे।
0: बल मतलब तेज कराते हैं, और बड़ी एक मुख्य भूमिका रहती थी लोहारा दी भी ग्रां च की भी, जियाँ कि अपने मतलब खुट हो गए कदाल हो गए ये सारी चीज़ा जेडे खेतीबाड़ी दे औजार थे इन्हें जो हाँ ठीक कराते थे उन्हें टाइम च,
1: जी
0: है
1: जी जी
0: ना।
1: और इस दे कन्नै कन्नै साढ़े जेहड़े लकड़ी दे काम ने जियां हाँ बींडे पांदे ने दराटुआं जो
0: जी
1: या
0: जी जी
1: फिर
0: जी जी जी
1: कुहाड़ियां जो या फिर खुटन होई है ना, या फिर कोई जुंगला ही बनाना लकड़ी दा, या फिर मेई बनाना है, या फिर अहां दे हल दे डंडा बनाना, ते सै लकड़ी दे जेहड़े मिस्त्री होंदे थे
0: जी जी जी
1: तिन्हां
0: जी
1: वल लेके जांदे।
0: बिल्कुल कहने जियाँ जियाँ बोलिया समय बदलाउंदा गया तियाँ तियाँ खेतीबाड़ी दे तरीके भी बदलाउंदे गए न। और जिहड़ी आधुनिक चीज़ा आउणियां लगी न कि भी जियाँ कि इन्हां चीज़ां ने साढ़े जिहड़े मतलब समय की भी बचत हो कर दी है, और खेतीबाड़ी दे कामकाज के बीते भी से भी जल्दी हो जा करते हैं।
1: जी
0: तो मेरा गलाने का ये मतलब है कि हाँ जो जिहड़ी आधुनिक जियाँ चीज़ा ने खेतीबाड़ी के संबंध में उन्हों का हाँ जो प्रयोग करना चाहिए। और दिखा कि बोलते ना कोई भी काम हों अगर उस काम जो सावधानी कने कर दें तो साढ़े ताई से काम के भी बांका रहता है,
1: बिल्कुल
0: जियाँ कि हूँ मशीनीकरण हो गया है ना, कोई भी काम के हाँ मशीना करने करना है, हूँ हाँ खेतीबाड़ी करने तो जियाँ कुछ ट्रैक्टर करने कर देने या फिर छोटे

0: ट्रैक्टर होंगे ना
1: पावर टिलर।
0: तेना वहां खुद ही मतलब चलाते हैं, तो उत्थ भी सांझो पूरी सावधानी कने मतलब से काम काज कन भी करना चाहिए ताकि कोई ऐसी वैसी दुर्घटना ना हुई जाए
1: बिल्कुल,
0: मतलब।
1: तुहाड़े बोलने का मतलब कि हाँ जलो अपने खेतों ने जुताई कर दें तो इससे पहले जिहड़े से अपने जिहड़े मशीनां ने ट्रैक्टर ने पावर टिलर ने तेना जो अच्छी तरह तेना दी जांच जिहड़ी से करना चाहिए, कोई नट बोल्ट ढिला है या फिर कोई ऐसा कोई लीकेज तो नहीं किसी चीज़ दी तेल दी या कोई
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: चीज़ां दी, तो इन सारी चीज़ां जो ही हाँ दुरुस्त करना है। और अगर बैरे वैसे तो छोटी मोटी चीज़ां हाँ आपको ही दिख लेना चाहिए, पर अगर संजो नहीं पता लगा था तो अपने नज़दीकी दे जित्थू भी इन्हां दे मैकेनिक संजो मिलते हैं उत्थ
0: जी जी
1: जाए
0: जी
1: के
0: जी
1: जड़ा
0: जी
1: से इस चीज़ का समाधान हाँ पाना, और अपने जड़े यंत्र ने मशीना ने इन्हें जो समय रेंदे हाँ अच्छा हालत बीच जड़ा से रखना हो, जिससे कि जलू हाँ सू इन्हें चीज़ों की जरूरत पौनी है तो तलू हाँ अपने काम कार जड़े से अच्छी तरह और सुविधाजनक करी सकना है ना।
0: बिल्कुल। तो आप फिर दे यहाँ सारे रली मिली सुनना एक प्यारा दे लोकगीत, तो किसान साथी सुनते ने लोकगीत।
1: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्रों से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2000

0: 26 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत ज़रूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बम्बई शेयर बाज़ार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। AFC अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेज़बान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Maha Puja, followed by the Kumbh Abhishek and flag-hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiva. In a social media post after the visit to the temple, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Early addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said, India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
1: Azadi ke samay, Sardar Sahab ne 500 se jyada riyasaton ko jodkar ek Bharat ka aadhunik swarup gadha tha. तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sardar Dham Hostel at Varodra a short while ago. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster countries' readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement the Prime Minister's appeal at the ground level. Prime Minister Modi made 7 appeals to citizens yesterday to deal with adverse impacts of West Asia crisis, including prioritising work from home wherever possible, reducing fuel consumption by using metros and public transport, and opting to carpooling, avoiding foreign travel for a year. In an environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today said that corporate funding is essential for habitat restoration, technology-driven monitoring and community-based conservation of big cats. Addressing a CII annual business summit in New Delhi, the minister urged industry leaders to actively support global big cat conservation efforts.
3: Next June 1st and 2nd, India will be hosting the first World Summit of International Big Cat Alliance. IBCA is Prime Minister Shri Narendra Modi Ji's initiative to save the 7 big cats of the world. Corporate funding is essential to support critical areas of big cat conservation such as habitat restoration, technology-driven monitoring and surveillance, community-based conservation, capacity building and conservation awareness. I urge you all to come forward to save the big cats because the big cat maintain ecological balance, protecting vast landscape, biodiversity and water resources.
2: India continued to hold the number one position in the latest ICC men's ODI team rankings following the annual update released today. However, the lead over New Zealand has reduced from 8 to 5 points. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118, while New Zealand gained 2 points, moving up to 113. And that is the end of this news bulletin.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज जल संरक्षण तकनीकें इस विषय पर आपके साथ जानकारी साझा की जाएगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी करवाया जाएगा लोकगीतों के साथ।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना करते सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम किसान साथियों टियाले पर ने मंजे सो की पंच दा पंच जी राम राम
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम सुना करते सारे ही श्रोतियां जो भी टियाले ते एक बारी फ्री ते राम राम। और दिखा बारिश भी हो करती दूं दूं चौं चौं दिनों बाद जड़ी से और कन्ने कन्ने साढ़े किसान भाई जड़े इसे कणका दिया बटोला भी जड़े इसे लगे हुए है ना दिन रात
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दे बीच जड़ा से अहां दे जड़े किसान भाई ने कुछ एक बिल भी होगी और तेना जड़े से अगली फसल दी भी जड़ी से तैयारी शुरू करी थी है ना
0: बिल्कुल।
1: और उस बीच जड़ा से सबसे पहले तो अहां दे जल अहां अगली फसल की तैयारी करते तो सबसे पहले साढ़ी जमीन जड़ी से नमी होना बड़ी ही जरूरी है ना
0: जी जी।
1: और इन दिनों च बारिश होगा करती है तो अहाँ की जमीन च नमी भी काफ़ी और इस बीच जोड़ा से अगे भी जलू अहाँ सारी फसल जी से बढ़वार लेंदी है तो उस वेले जो से समय समय पर पानी की जरूरत जी से पौंदी रहती है ना
0: बिल्कुल। कने गल करनी अस जल संरक्षण के बारे च
1: जी
0: तो देखा किसान साथियों कि भी जल के भी पृथ्वी पर जीवन का एक आधार है मानव हो गया पशु पेड़ पौधे और सारे जीवत आए जो जल के भी बड़ा बड़ी महत्वपूर्ण है कने बिना जल दे जीवन के जीवन की हाँ कल्पना भी नहीं कर सकते ना
1: जी जी।
0: किसान साथियों देखा कि भी आज बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण शहरीकरण और जल दे अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जल संकट के भी गंभीर समस्या बढ़ती जा रही है।
1: हाँ जी
0: कने कई क्षेत्र च पीने योग्य जरा पानी की कमी के भी उत्पन्न हो चुकी है तो इस ताई जल संरक्षण आज दी सारे दे बड़ी जड़ी जरूरत के भी बनी गई है। जल संरक्षण का अर्थ है कि जल का सही उपयोग उसकी बर्बादी जो रोकना और भविष्य ताई जल संसाधन जो सुरक्षित के भी रखना है।
1: हाँ जी
0: जल संरक्षण ताई जड़ी मती सारी आधुनिक और पारंपरिक तकनीकें कहन भी उपलब्ध हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य जड़ा वर्षा जल जो संचित करना भू जल स्तर जो बढ़ावा देना कने सारे दे बाकी तकनीक है वर्षा जल जो एकत्रित करना घर की छत्ता पर गिरने वाले जड़े वर्षा जल जो पाइपा के माध्यम कने टैंकिया च जमा किया जा सकता इस जल का उपयोग घरेलू कार्य कृषि सिंचाई ताई उपयोग के भी हाँ करी सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल तो ठीक लाया कि अहाँ जो वर्षा जल संचय जरा से करना चाहिए तो इस वास्ते जरा से बारिश दे पानी जो अहाँ टैंक कुएं भूमिगत संरचना से जमा जड़े से करी सकते जिससे सारा जी कि तुम बोले कि भू जल स्तर जड़ा से बद और घर की छत च पानी एकत्रित जड़ा से अहाँ करी सकते हैं इस पानी जो है ना
0: जी
1: अपने
0: जी।
1: भूमिगत जड़े टैंक अहाँ बनाए होंगे ने इस दे कन्ने कन्ने अहाँ सिंचाई बिच जड़ा से ड्रिप सिंचाई तकनीक जड़ा से उपयोग करी सकते जिस बिच पौधे की जड़ा तक जड़े से बूंद बूंद पानी अहाँ पहुँचाई सकते इससे क्या होंगे कि पानी की जी है 40-60% जी से बचत हो जाती और साढ़े फलदार पौधे और सब्जियों वास्ते ये तकनीक जी ड्रिप सिंचाई तकनीक है बड़ी ही लाभदायक है।
0: बिल्कुल
1: इसके
0: बिल्कुल।
1: कने कने स्प्रिंकल सिंचाई जी की फुहारे की तरह खेत बिच अहाँ छिड़काव जड़ा से कर दी यानी कि कुछ एक फसल साड़ी हैं उच्चे कद दी होंगी यानी कि इस बिच जड़ा से फुहारा सिंचाई जड़ा से अहाँ उचित मन्ने जाता इस बिच भी जड़ा से पानी का जड़ा से बचाव होंगे पानी की जी से हाँ बचत होंगी और साड़ी जी उत्पादन है खेतरों में साड़ी फसल का से अच्छा रहता है।
0: जी जी जी जी। कने किसान साथी देखा कि भी घरेलू स्तर पर भी कई उपाय द्वारा जल संरक्षण के भी किया जा सकता है कने नलके जो खुला छोड़ना या फिर पाइपा दे गड़ियां जो धोना और अत्यधिक जल का जड़ा उपयोग करना के भी जल्दी बर्बादी है
1: जी
0: अगर लोग जरूरत अनुसार ही जल का उपयोग करन ता बड़ी मात्रा च अहां पानी के भी बचाई सकते हैं।
1: जी जी
0: कने जल संरक्षण केवल एक तकनीकी विषय नहीं है बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर असा आज जल जो बचाने दे उपाय अपनांदे हन ता भविष्य सुरक्षित के भी हाँ रह सकते हैं। जल दी हर बूंद अनमोल है कहने सांझो सारे समझना पौना है कि जल है ता कल है।
1: जी
0: आधुनिक तकनीक जिया कि पारंपरिक ज्ञान और जन भागीदारी दे माध्यम दे असा जल संकट का समाधान कर भी कर सकते हैं। इस ताई सारे जो जल संरक्षण की दिशा च मिली करे काम के भी करना है ताकि आने वाली पीढ़ी जो स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कर भी कराई सके।
1: बिल्कुल ये तो कुछ एक जल बचाने की तकनीक थी और उस बिच हाँ जड़े से गलबात की और हूँ हाँ चलना एक प्यारे दे लोक गीत की तरफ ना
0: जी।

0: किसान साथियों, आशा करने कि यह प्यारा दे लोकगीत तुसां जो पसंद आए होना। और इस लोकगीत दे बाद उन्हां चलना अगली जानकारी दी तरफ, तां सुनदे ने जानकारी।
1: कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच जियां कि तुहां जो पता है हर दिन अहां दा प्रयास रहंदा एक नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तकर पुजाइए। मैं किसान मित्र अज अहां दे टियाले पर आए हो ना अज दे खास परौणे जड़े कि हन

0: केर सिंह ठाकुर कने ए विज्ञानिक है ने कृषि विज्ञान केंद्र चंबा चे कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब जी टियाले पर तो हाँ बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार।
0: तो डॉक्टर साहब जी गलबात करते हैं जिया कि अज का जरा अहां का विषय है सह है सुगंधित पौधे कने औषधीय पौधे
1: जी
0: की खेती जो करी के कि अहां दे किसान साथी बागवान साथी अपनी आर्थिकी जो मजबूत बनाई पान। तो अहां दे सुनने वाले तो सबसे पहला ये दसा कि ये जो सुगंधित पौधों विच जड़े से कौन कौन पौधे आते कने औषधीय पौधे की श्रेणी च कौन कौन पौधे आते हैं।
1: बिल्कुल, बड़ा बढ़िया तुहां प्रश्न किया। सारे ते पहले तो मैं तुहां ये दसना चाहता कि ये जड़े चाहे औषधीय पौधे हो चाहे सुगंधित पौधे हो इन्हों का जिक्र आज ते नहीं है।
0: हाँ जी,
1: बड़े पुराने समय ते है कने यहां दे जड़े ऋषि मुनि जड़े थे सह इन्हां जड़ी बूटियां ते ही दवाइयां बनांदे थे कने अहां दा जड़ा सह आदमी होन चाहे जानवर होन ते इन्हां दा इलाज करदे थे।
0: जी डॉक्टर साहब जी, तो हाँ बिल्कुल, जड़ा सह एक पते दी गल जड़ी से दसी है कि पुराने समय च दिखा अज दी अहां गल करन दा कितनी सारियां मशीनां आई हैं, चाहे अहां दे एक्सरे होने सीटी स्कैन होने या होर, लेकिन उस जमाने विच दिखा एक वैद नाड़ी दिखी के दसीन दे कि तुहां जो ए बीमारी है अगर तुहां ए खाद्दे है ना।
1: बिल्कुल
0: जी डॉक्टर साहब जी। हां जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, कने
0: हां जी
1: हुण जिहड़ा समय है सै एलोपैथी दा युग बोलदे सी
0: जी,
1: पर तुहां मैं एक चीज दसना चाहंदा कि इस च जितने भी दवाइयां बनदियां ने
0: हां जी
1: तिस विच कुथी ना कुथी जिहड़ा ना
0: हां जी
1: सै अहां दा जिहड़ा आयुर्वेदा है, आयुर्वेद दे जिहड़े प्रोडक्ट हैं या जड़ी बूटियां हैं ना
0: जी,
1: तिस दा इस्तेमाल हुंदा।
0: हां जी,
1: कने सारे ते बड़ी हैरानी दी गल है कि अज दे समय पर भी ज्यादातर जिहड़ी अहां दी जड़ी बूटियां हैं ना सै जंगले ते आउंदियां।
0: बिल्कुल
1: ठीक है
0: हां जी,
1: तेना दा अगर तुहां देखन तां वैज्ञानिक तौर पर सै जिहड़ी जड़ी बूटियां हैं ना सै हाले भी अहां दे जिहड़े किसान बागवान भाई जिहड़े सै अपनी जमीन पर नहीं उगा दे। तां सारे ते पहला प्रश्न जिहड़ा सै इही है कि भई किसान जो कियां जे तेना अगे लान कने तेना प्रोत्साहित करन कि भई तुहां अगे आ कने इन्हां चीजां दी खेती बाड़ी करा कने ए भी इक जिहड़ा तुहां दा अतिरिक्त आय दा जिहड़ा साधन है सै बनी सकदा है।
0: हां जी,
1: समय समय पर ए नहीं है कि सरकारां प्रयास नहीं करा दी या जिहड़े अहां दे विश्वविद्यालय सै प्रयास नहीं करा दे, प्रयास हर तरफ ते होंदा
0: जी,
1: पर कुथी ना कुथी जिहड़ा सै गैप रही जांदा, कुथी ना कुथी अहां दी कमजोरी रही जांदी, तिस दी वजह ते जिहड़ा अहां तिस चीजां जिहड़े सै अगे नहीं लैन जांदे।
0: हां जी,
1: हुण मैं तुहां दसना चाहुंदा कि अगर तुहां सरकारी तौर पर भी अगर कोशिश करना तां पूरे हिंदुस्तान च गल करना तां कम से कम 100 जिहड़ी जड़ी बूटियां देई है ना कि जिहड़े बड़े बड़ी ज्यादा जरूरत जिन्हां दी आयुर्वेद च होंदी।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, कने जिहड़ा अहां दा राष्ट्रीय जिहड़ा पादप बोर्ड है इसदा सह होए चाहे अहां दा इत्थों दा राज्य सरकार पर जिहड़ा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है तां तिन्हां भी कुछ जिहड़ी अहां दी प्रजातियां से चिन्हित कीतियां कि ए जिहड़ी ज्यादा बिकने वाली ज्यादा व्यापार इन्हां दा हुंदा कने इन्हां इन्हां जिहड़ी जड़ी बूटी इना जो तुहां होगा कने इस ते जेड़ा से तुहां ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता। ता 100 जेड़ा मैं तुहां दसा दा कि पूरे भारत वर्ष च 100 जेड़ी प्रजातियां जड़ी बूटियां दे सहित दे न कि जिन्हां दा व्यापार विच ज्यादा ते ज्यादा जेड़ा महत्व है
0: जी,
1: कने तिन्हां विच 32 जेड़ी प्रजातियां ने से हिमाचल च हो सकदी है पैदा
0: जी। दिखा भाई इस ते जेड़ी से बेहतर गल और क्या हो सकदी है कि इतनियां प्रजातियां जेड़ी से अहां दे हिमाचल विच जेड़ियां से उगाई जा सकदी ने ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सारे ते बड़ी बढ़िया गल अहां दी हिमाचल प्रदेश दी है कि हिमाचल दे प्रदेश जड़ा से बड़ा खूबसूरत अहां दा प्रदेश है कने हिमालय दी गोद दे च बसया से।
0: बिल्कुल,
1: कने जलवायु इत्थू दी इतनी अनुकूल है, जेड़ी भी अहां कोई गल करा दे कि जड़ बूटियां तिस वास्ते चाहे इत्थू दी मिट्टी होए चाहे इत्थू दा तुहां दा जलवायु होए जेड़े आवा हवा है से सारी अनुकूल है
0: जी।
1: पर कोशिश जेड़ी है से सिर्फ जरूरत क्या है, जरूरत यही है कि अहां जो क्षेत्र दे हिसाब पर अहां कुछ कुछ जेड़ी चीजां से जड़ी बूटियां से अहां चिन्हित करना पौनी तिन्हां पर काम करने की जरूरत है।
0: जियां सुगंधित पौधों के उपर हाँ गलबात करा करते हैं सोगी औषधीय पौधों के उपर, तो अगर सुगंधित पौधों की गल करिए डॉक्टर साहब, तो जियां कि रात राणी होई, गुलाब है, लेमन ग्रास होई, तो ये इसके अलावा जियां पुदीना होई या पाबड़ी होई, ये भी क्या सुगंधित पौधों की श्रेणी च ही आते?
1: ये दोनों दोनों काम करते, औषधीय गुण भी इन्हें।
0: हाँ जी,
1: कने औषधीय गुण होने के सोगी सोगी इन्हें से सुगंधित तेल या बाकी चीजें भी हैं। हुण तुहां कुछ गणाए मैं तुहां होर रोज मैरी है
0: जी जी
1: सह खुशबूदार पौधा है।
0: हाँ जी,
1: फिर तुहां दा लेवेंडर आई गया।
0: हाँ जी,
1: जरेनी में आई गया।
0: हाँ जी, मधुकामिनी।
1: हाँ, मधुकामिनी। बैबूना आई गया
0: जी जी।
1: फिर तुहां एक वाइल्ड मैरीगोल्ड होंदा।
0: हाँ जी,
1: जंगली गेंदा। ये सारे सुगंधित हैं। ज्यादातर अगर तुहां देखा तो ये प्राकृतिक तौर पर ही जी है ना जंगले च ही मिलते कने।
0: हाँ जी,
1: इसकी खेती बाड़ी जी बड़ी घट करते भी है ना, तो बड़े इको दिको कने बड़े भी बड़ी घट संख्या च करते
0: जी
1: है ना।
0: हाँ जी,
1: ये नहीं बोली सकते हाँ कि इसका स्कोप नहीं है।
0: हाँ जी,
1: हाँ मैं तुहां एक उदाहरण देना चाहता कि कहां दे पवन जी हैं बटियाद।

0: बाड़ा हुई गया
1: हाँ जी
0: या फिर ये जंगली गेंदा होया,
1: हाँ
0: इस
1: जी
0: पर जड़ा सा काम करा देता तिस दे माध्यम ते तिना जो जड़े तिथु डिस्टिलेशन यूनिट जिस विच तेल कट देना
1: हाँ
0: सह
1: जी
0: मशीन भी तिना किसानों दिते गई कने तिना बड़ा अच्छा रिस्पांस देता
1: हाँ
0: कने
1: जी
0: हुण भी जड़ा कुछ दिन पहले जड़ा से आहां दे नौणी विश्वविद्यालय ने भी तिना चार पांच जड़े किसान है ना तिना सम्मानित किया इसी वास्ते कि सह जड़ा ना सह इस दिशा च काम करा दे ताकि तिना देखी करी होर भी जड़े किसान बागवान से अगा आन
1: जी हाँ जी
0: जी
1: दिखा डॉक्टर साहब जी, आज जी तो हाँ जिक्र किया है ना कि आज अगर हाँ किसान चाहन तो सरकार कने विभाग दे अधिकारी हर कदम पर किसान साथियां सोगी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अहाँ
0: बिल्कुल
1: बिच एक जड़ी से लगन होना चाहिए कि अहाँ भी जड़ा सा किया अपनी पहचान अपने इलाके बिच इसी कमियों करके बनाइए।
0: हाँ एक एक और मैं गल तुहाना शेयर करना चाहता कने बड़ी महत्वपूर्ण है कने किसान बागवान भाइयों ये जरूर सुनना चाहिए कने इस पर ध्यान देना चाहिए कि हुण जड़ा है प्रदेश सरकार ने एक MOU साइन किया है
1: अच्छा
0: ये किया डायवर वाले ने
1: जी
0: ठीक है कने इस विच तुहांदा प्रौद्योगिकी विभाग जड़ा सह भी शामिल है
1: हाँ जी
0: जिहड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जंगलात है सह भी शामिल है
1: हाँ जी
0: विश्वविद्यालय जड़े ने अहां दे सह भी शामिल है ना कने आने वाले समय विच तेना टारगेट रखे है कि कम से कम भी जड़ा से हर साल 1 लाख पौधा जड़ा से किसान जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसान ना जो अलग अलग किस्म के पौधे जेडे औषधीय पौधे हो सुगंधित पौधे हो सह वितरित करने कने तेना दे एक सब सारे ते बड़ा जड़ा प्रश्न रहता किसान बागवान का सह ये होगा कि भाई उगाई तो हाँ लेंगे उगाने मना नहीं करता कोई भी
1: जी
0: तेना दी भी जी सारे ते बड़ी जी समस्या होंगी तेना दी यही होंगी कि भाई अह बेचना कुता है बाहर
1: हाँ
0: च
1: जी जी
0: सारे
1: बिल्कुल
0: ते
1: हाँ
0: जेड़ा
1: जी
0: प्रेशन चेन बड़ा जेड़ा प्रेशन चेन लगदा सा लगदा मार्केटिंग दा
1: जी बेचना कुतु है
0: बेचना कुथू है
1: हाँ
0: ता
1: जी
0: इस विच ए जेड़ा MOU साइन होया इस विच ए भी गारंटी है कि भई जिना देना है अगर जे डाबर वाले देंगे से पौधे ता तेना जेड़ा से प्रोडक्ट जेड़ा बाद विच से डाबर वाले है नहीं लेना सरकार दी तरफ ते अश्योरिटी हो जानी कि जे अगर किसान कोई चीज सुगंधित पौधे या औषधीय पौधे उगा देता तिसियो खरीदार जेड़ा से पूरी सरकार ही बैठी हो कने सेना डाबर जे माध्यम ते जेड़ी से वापस तेना से चीज ले जानी
1: हाँ जी देखा
0: ठीक है
1: जितने भी बाजार बिच हाँ जितना कोई साबुन है शैम्पू है या परफ्यूम है ना देखा सुगंधित पौधे ते जड़ा सा ये सब तैयार होंगे है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल है
1: है ना
0: सारी चीजें कने
1: कने अगर हाँ दुए भाजी तो हाँ जिक्र किता हाँ दस्या आयुर्वेदिक दवाइयां बिच जी औषधीय पौधे हुई हरड़ हुई
0: बेड़ा हो
1: भेड़ा
0: गया आमड़ा हो
1: आंवला
0: गया
1: है ना
0: हाँ ये तो सुने होना तो त्रिफला बनता है
1: हाँ जी
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: ना
1: हाँ
0: जिना
1: जी
0: जिना आदमियों दिक्कत होंगी जिना दा पाचन शक्ति ठीक नहीं होंगी जिना
1: जी
0: भुख नहीं लगती
1: हाँ
0: है ना
1: जी
0: तिना वास्ते स्पेशल त्रिफला बनता है कने त्रिफला बिच यही चीज तीन चीजा पौंदी हरड़
1: हाँ
0: बेड़ा कने आमड़ा
1: कारण देखा ये आरड़ भेड़ा आंबला जड़ा सा अहाँ दे ग्राम बिच अहाँ दे जमीना बिच कने बना बिच काफी मात्रा बिच होंदा
0: बिल्कुल
1: है ना
0: होंदा अब आवे ही है ना कि
1: हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जानकारी नहीं है
1: जी
0: कि किया इसी इस्तेमाल करना सभी
1: हाँ
0: जरूरी
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना इसके अलावा और भी तो हाँ दिखा होना एक पीछे जालो कोविड का दौर आया ना
1: जी जी
0: तो कोविड का दौर बिच हाँ साइकोलॉजिकली ना बड़ी बड़ी समस्या आएगी
1: हाँ जी
0: यानी इस दौरान जेड़े ज्यादातर आदमी मरे ना सह बीमारी दे नहीं मरे
1: हाँ जी
0: साइकोलॉजिकली प्रेशर ने मरी गए
1: जी
0: ठीक
1: बिल्कुल
0: है
1: हाँ
0: तिना
1: जी
0: लगे पता नहीं मिंजो क्या हो गया हूं क्या हुई है कोरोना आई गया कोरोना आई गया
1: हाँ
0: मैं तुहां दसना चाहता कि भई इस दौरान मैं भी इसका हिस्सा था कने जल लॉकडाउन लग गया कने कोई बाहर नहीं जाते था मैं लोगों बिच जाता था ठीक है
1: हाँ जी
0: और मेरा जड़ा एक इस विच बचाव दा सारे ते बड़ा काम जे कीता था सह कीता जेड़े मैं अपने घरे दो तीन चीजा तैयार कीतियां थी मैं तिस दा काढ़ा लेंदा था मैं कोई दवा नहीं ली कोई
1: हाँ
0: कुछ
1: जी
0: नहीं ली कने मैं लोगों दे बिच गया जिथू मिंजो ये भी लगे कि दस्या लोगों की इसी कोरोना हो गया
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: तेना दे भी मिलया
1: हाँ
0: मिंजो
1: जी
0: कोई दिक्कत नहीं हुई तो सह कुछ जड़ी चीजें ना कने हरेक के घरे च होनी चाहिए तीन चीज चार चीजें मैं हमेशा कहलांदा
1: हाँ जी
0: एक तो हाँ गिलोय हो गया गिलोय हर घरे होना चाहिए
1: बिल्कुल
0: तुलसी हर घरे होना चाहिए
1: जी
0: ठीक है जेड़ा लेमन ग्रास तो हाँ बोला दे
1: हाँ जी
0: सह हर घरे होना चाहिए
1: हाँ जी
0: स्टीबिया एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लांट है
1: हाँ जी
0: ठीक है स्टीबिया प्लांट है सह चीनी का काम करता
1: हाँ जी
0: ठीक है जितने भी तुहां शुगर पेशेंट है ना तेना वास्ते सह रामबाण है
1: हाँ जी
0: ठीक है ये जड़ी चीजें है ना
1: हाँ जी
0: एलोवेरा हो गया
1: एलोवेरा हाँ जी
0: ठीक है
1: हाँ
0: ये चार पांच जड़ी चीजें है ना ये तो मैं बोलता कोई भी घर दे नहीं होना चाहिए जिस घर ये गमले बिच नहीं होना चाहिए
1: बिल्कुल हाँ जी
0: ठीक है
1: देखा इस तरह हाँ जी ज्यादा जगह जमीन की भी जरूरत
0: जरूरी
1: नहीं
0: तो नहीं है
1: गमले
0: गमले बिच
1: बिच
0: ही
1: ही है ना
0: गमले बिच मैं तो हाँ एक और चीज तुहाने साझा करना चाहता कि 2-3 साल ते मेरा ये ट्रेंड हो गया कि मैं स्टीविया की जड़ी गल करा था
1: जी
0: ठीक है
1: हाँ जी
0: इससे कितनी मिठास होंगी कि भाई अगर तो हाँ एक चम्मच लेंगे ना जी मान लियो एक ही चम्मच की मिठास है तो एक पत्ता जरा से 4 गुना तीस चम्मच दे बराबर मीठा देता इतना मिठास होंगी तीस
1: हाँ
0: से
1: जी
0: ठीक है बड़े सारे किसान जड़े से कोई उन्ने ते चंबे आए जालू तेना ने इंट्रैक्शन की तो सह खरीदी करी ले गए मेरे ते पौधे तिथु ते ले करी कि नहीं नहीं आहा तो ये चाहिए चाहता ज्यादातर जड़े थे से बेचारे तेना च बुजुर्ग भी थे
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: शुगर दे मरीज थे तेना बोले आहा तो बहुत ही बढ़िया चीज मिली गई
1: जी
0: है
1: जी
0: ना तो चीनी ते छुटकारा पाना चाहते ये मिली गया था काढ़ा पी सकते चाय पी सकते दूध पी सकते पत्ता पाया तीस कने मिठास दी मिठास कने स्वाद दा स्वाद कने फायदे दा फायदा
1: जी
0: ठीक है
1: डॉक्टर साहब जी इसके बाद अगला प्रश्न तो

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम किसान बाणी इतु संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने ट्रायल दस्त से बड़का चाचू
1: कन्ने पंच जो दिया अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से शुरू करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सब्जी मंडी व्यापारिक जिला परियोजना व सिटी सेंटर परियोजना हमीरपुर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए प्रचार तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन, बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल। चंबा जिला के भटियात उपमंडल में ककीरा के पास वाहन दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मृत्यु, 4 अन्य घायल। और बीती रात अंधड़ व वर्षा से प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित। ऊना जिला में 800 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके खिलाफ एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहाँ पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
1: प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 3600 पंचायतों में से 234 पंचायतों में चिट्टा के सेवन करने वाले पाए गए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक 123 कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 31 को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
1: जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 है, जेएसबी आईपीएच के 9 है, जो यहाँ आर्मी और नेवी में काम करते रहे हुए उनके 8 है, एचआरटीसी के 8 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 है। टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल है, जब उनकी एडमिशन्स होगी, हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिमला में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को एंटी चिट्टा अभियान के क्रियान्वयन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला में सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्व स्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने आज शिमला में शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं व ग्रीन ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ये परियोजनाएं स्थायी राजस्व सृजन की दिशा में सहायक साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 12 व 13 मई को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित होने वाली पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए वे आज मैसूर पहुंचे, जहां कर्नाटक विधानसभा के अधिकारियों ने उनका परंपरागत व भव्य स्वागत किया। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश व लोकसभा के वरिष्ठ अधिकारी और 6 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस दौरान समिति विधानमंडल निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों का एक समान मॉडल विषय पर मंथन करेगी। चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तुनुहट्टी लाहड़ू मार्ग पर ककीरा के पास आज तड़के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक जबकि चालक मंडी जिले का निवासी था। ये पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे और मनाली से डलहौजी जा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 47 शहरी निकायों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। सोलन नगर निगम की कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया और रोड शो के माध्यम से वोट की अपील की। विनय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत होगी।
2: डिफरेंट वार्ड में जाने का मौका मिला तो अच्छी पोजीशन में है और लगभग हम 10 से 11 वार्ड यहाँ जीत रहे हैं। हमारे उम्मीदवार है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से चुनाव को लड़ रहे हैं।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता त्रस्त है। पालमपुर नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान आज उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और महंगाई व अव्यवस्था से लोग दुखी हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव में लोग भाजपा की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा इन चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। नुक्कड़ सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मंडी जिला के विभिन्न उपमंडलों में आज जिला परिषद चुनाव के लिए करीब 123, सोलन में करीब 29 और ऊना जिला में 31 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे। कल 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। भाजपा 4 नगर निगमों के चुनाव को लेकर अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र के समग्र विकास का विजन डॉक्यूमेंट होगा। पार्टी ने दावा किया है कि ये संकल्प पत्र जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कल 12 मई को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में जनता विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति को चुनते हुए भाजपा को समर्थन देगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात अंधड़ सहित बारिश जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। ऊना जिले में तूफान के कारण बिजली के 886 ट्रांसफार्मर ठप्प हो गए हैं जिससे कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। हालांकि विभाग के कर्मचारी बिजली बहाल करने में जुटे हुए हैं। जिले में कई स्थानों पर पेड़ गिरने से निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक निचले व मध्यम क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है। पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार 4 लाख पेंशनरों के पेंशन व भत्ते जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी व अन्य भत्ते नहीं दिए गए हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में वित्तीय प्रबंधन चरमरा गया है और महंगाई भत्ते की 15% किश्तें लंबित पड़ी हैं।
3: 16 से लेके 2021 तक लोग सेवानिवृत्त हुए, उनकी आज दिन तक लीव इन कैशमेंट, उनकी ग्रेच्युटी, उनके जो ड्यूज थे, सरकार ने नहीं दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार पैसे के फजूल खर्ची कर रही है, ये सारे का सारा पैसा प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों का है। इस सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन वो इस तरह से चरमरा गया है कि इस सरकार को यही समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या और क्या नहीं करें। HRTC के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ बैठ, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, आई कितनी तरीक हो गई आप।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से शुरू करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सब्जी मंडी व्यापारिक जिला परियोजना व सिटी सेंटर परियोजना हमीरपुर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए प्रचार तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल। चंबा जिला के भटियात उपमंडल में ककीरा के पास वाहन दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मृत्यु, 4 अन्य घायल। और बीती रात अंधड़ व वर्षा से प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित। ऊना जिला में 800 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।
8: भारत माँ पर जब जब भी संकट आया, ऋषियों, मुनियों, विद्वानों और वीरों ने एक ही सपना देखा और उसे साकार किया।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज़ में।

अभी आपने सुने जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई ये गजल, अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कव्वाली के रूप में।

अभी आपने सुना सोनू निगम व साथियों की आवाज़ों में गाई इस कव्वाली को। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी आपने सुना योयो हनी सिंह और साथियों की आवाजों में गाया ये पंजाबी गीत। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज़ में गाया ये गीत, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

बोलियां। आप श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब ये समय है देशगान का। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी सोनू निगम, श्रेया घोषाल व साथियों की आवाजों में, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना के शंकर महादेवन व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। अब पहले समाचार संध्या व रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
5: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
6: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
6: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
5: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
6: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
5: सरदार धाम हॉस्टल इन वडोदरा इंक्लूड्स हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर 1,000 बॉयज एंड 1,000 गर्ल्स अलोंग विद एमिनिटीज लाइक अ सेंट्रल डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी एंड ऑडिटोरियम। मिस्टर मोदी ऑल्सो विजिटेड वेरियस फैसिलिटीज एट द सरदार धाम कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग द रिसेप्शन एरिया, सिविल एमिनिटीज, डाइनिंग एरिया एंड ई लाइब्रेरी। Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja, followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. He said 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President, Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas, and 45 days of LPG. This was informed during the fifth meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster countries' readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ramohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. Meanwhile, the centre today said the stock of fertilisers in the country is more than 51% for the Kharif season 2026. Additional Secretary at the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Aparna Sharma, stated this while addressing the inter-ministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today.
7: For the season of Kharif 2026, the stock is more than 51%. The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. So a total of 97 lakh metric ton of fertilizer has been added to the availability after the crisis situation.
5: Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the government is ensuring the supply of fuel to the consumers. She informed that over the past 3 days, 1 crore 14 lakh LPG cylinders have been delivered to households against the 1 crore 26 lakh bookings. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India's food stock is abundant and there is no food shortage in the country. The minister said this while jointly launching the Science Excellence for Health through Agriculture Transformation Sehat Initiative alongside Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda in New Delhi. Mr. Chauhan said that the initiative will help in boosting the healthy lifestyle of the people. The center has notified the implementation of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Act 2025, that is Viksit Bharat Jiramji. The act will be rolled out nationwide from 1st of July this year. The Rural Development Ministry said that the act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower the rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. More from our correspondent.
8: The Viksit Bharat Jiramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Jiramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. With Deependra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. In Assam, preparations are in full swing for the swearing-in ceremony of BJP leader Hemanta Biswa Sarma as the chief minister for a second consecutive term tomorrow. The ceremony will be held in Guwahati. The swearing-in will mark the NDA's third consecutive term in Assam. Dr. Sarma today visited the venue to review the arrangements. Speaking to media, he said Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen will attend the ceremony. Several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states are also expected to be present. In West Bengal, the new government began its work today. Chief Minister Shubhendu Adhikari chaired the first cabinet meeting and also held administrative and law and order reviews at the state secretariat. Our correspondent has the details.
9: Departments have been distributed among the five ministers of the government of West Bengal today. They took oath on 9th May along with Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a major development, several central government schemes including Ayushman Bharat, Jal Jeevan Mission, Beti Bachao Beti Padhao have been given nod to be implemented in West Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media within 45 days lands will be given to the Border Security Force for fencing along the Indo-Bangladesh border. The previous government under the TMC rule has not transferred the requisite land even after receiving fund from the central government. The new state government also informed no running welfare state government scheme will be stopped by the new government of West Bengal. Kollan Laha reporting from Kolkata.
5: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today recalled the achievements of 1998 Pokhran 2 nuclear tests on National Technology Day. Addressing a program on the occasion, the minister highlighted that in the last one decade, India's defense production has gone up by 174 times to 1.54 lakh crores.
10: In 2014, we had just 350 to 400 startups. Today, we have more than 2 lakh. We stand number 3 in the world ecosystem of startups. In just one decade, our defense production has gone up by 174 times to 1.54 lakh crore. And our defense export has gone up 34 times in just one decade, up to 23,622 crore.
5: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today said corporate funding is essential for habitat restoration, technology-driven monitoring and community-based conservation of big cats. The minister was addressing a CII annual business summit in New Delhi.
11: Next June 1st and 2nd, India will be hosting the first World Summit of International Big Cat Alliance. IBCA is Prime Minister Shri Narendra Modi Ji's initiative to save the 7 big cats of the world. Corporate funding is essential to support critical areas of big cat conservation such as habitat restoration, technology-driven monitoring and surveillance, community-based conservation, capacity building and conservation awareness. I urge you all to come forward to save the big cats because in balance. The big cat maintain ecological balance, protecting vast landscape, biodiversity and water resources.
5: Benchmark domestic equity indices fell around 1.5% today as a fresh flare-up in U.S. and Iran tensions led to a rise in crude oil prices and dampened investor sentiment. The BSE Sensex plunged 1,313 points to close at 76,015. The NSE Nifty lost 360 points to settle at 23,816. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast heat wave conditions over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, heavy rainfall is likely to prevail over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. In Delhi NCR, cloudy skies are expected over the national capital tomorrow. On to sports. In cricket, India continues to hold the number one position in the latest ICC men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113. Australia stayed at the third spot with an unchanged rating of 109. The biggest movement inside the top five came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the fourth place. And in IPL cricket, Punjab Kings were 180 for 2 in 11.3 overs against Delhi Capitals in Dharamsala when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and west Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. That is all in the news at 9. Good night.
12: FM band 103.4 MHz par ye Akashvani ka Dharamshala kendr hai. रात्रि के 9:15 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत. इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार मनन भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत. सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, मनन भारद्वाज, इनका जन्म 19 अक्टूबर सन 1987 को हुआ एक प्रमुख भारतीय गायक, संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता और गीतकार है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड उद्योग में काम करते हैं और मुख्यतः सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं.

पतंजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं संगीतकार मनन भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे महज 4-5 साल के थे तब वे कविताएं रचते और उन्हें अपनी कक्षा में गाते थे। कभी कभी वे उन्हें सुनाते भी थे। जब वे 8वीं कक्षा में थे तब उन्होंने संगीत को अपना करियर बनाने का निश्चय कर लिया था। उन्हें लगता था कि संगीत उनके लिए सबसे अच्छा करियर होगा। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि शुरुआती वर्षों में उनकी कड़ी मेहनत में कई रातों की नींद हराम करना, पैदल चलकर काम पर जाना और एक छोटे से कमरे में रहना शामिल था। उन्होंने ये भी बताया कि वे A.R. रहमान और जगजीत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। 2020 में उन्होंने सचेत टंडन के कांधे का वो दिल के लिए संगीत दिया। उसी वर्ष उन्होंने अरमान मलिक के लिए बहम और दर्शन रावल और नेहा कक्कड़ के लिए तेरी आंखों में गीत तैयार किया। वह 2021 तक अपने YouTube चैनल पर विभिन्न गानों और कुछ नए गानों के कवर जारी करते थे। उन्होंने जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार द्वारा गाए गए पहले प्यार का पहला गम को फिर से बनाया। भारद्वाज को बॉलीवुड में ब्रेक फिल्म शिद्दत से मिला। 2022 में उन्होंने अरिजीत सिंह की आवाज़ में धोखा गीत की रचना की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म राधे श्याम के हिंदी संस्करण में 3 गाने मैं इश्क में हूँ, ये इश्क ना हो और मैं इश्क में हूँ की रचना की। उन्होंने अपना संगीत वीडियो दुआ भी रिलीज़ किया। उसी वर्ष वे फिल्म हिट द फर्स्ट केस और तारा वर्सेस बिलाल के संगीत निर्देशक रहे। 2023 में भारद्वाज ने नेवर टुगेदर और बैक टू कॉलेज रिलीज किया।

इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत संगीतकार मनन भारद्वाज द्वारा रचित कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। श्रोताओं, भारद्वाज को मुख्य रूप से चिट्टा तेरी आंखों में शिद्दत टाइटल ट्रैक, धोखा मैं इश्क में हूँ और अर्चन वैली जैसे गानों के लिए जाना जाता है। उन्हें शिद्दत 2021 के संगीत एल्बम से मुख्यतः पहचान मिली और राधे श्याम, सत्य प्रेम की कथा, यारियां 2 और एनिमल के संगीत एल्बमों से उन्हें और अधिक प्रसिद्धि और पहचान मिली। उन्होंने टी सीरीज के साथ अनुबंध किया है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत संगीतकार मनन भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना शांति विष्ट व सखियों की आवाज़ों में गाया ये लोकगीत। हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति संता आर सिंह की आवाज़ में।

अभी आपने सुना शांता आर सिंह की आवाज़ में गाया ये लोकगीत, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना नसीम वाला व सखियों की आवाज़ों में गाया ये लोकगीत। हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति प्रताप चंद शर्मा की आवाज़ में गाई।

अभी आपने सुना प्रताप चंद शर्मा की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज़ में गाया कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

प्रवीण कौर की आवाज में गाया इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं और ये समय है आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम का। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति नाम गुम जाएगा फिल्म से।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल व उदित नारायण के युगल स्वरों में गाया ये गीत। फिल्म का नाम था नाम गुम जाएगा। आपकी पसंद गीत हमारे इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हमारा दिल आपके पास है फिल्म से।

अभी आपने सुना जावेद अख्तर की लिखी शब्द रचना को संगीत में पिरोया था संजीव दर्शन ने और आवाजें थी अलका याग्निक। कुमार शानू की फिल्म का नाम हमारा दिल आपके पास है। आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से।

अभी आपने सुना अलका याग्निक व साथियों की आवाज़ों में गाया हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का यह गीत। शब्द रचना समीर की थी और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आपकी पसंद गीत हमारे इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मर्डर फिल्म का ये गीत कुणाल गांजावाला की आवाज़ में।

अभी आपने सुना सईद कादरी की लिखी शब्द रचना को, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। आवाज थी कुणाल गांजावाला की और फिल्म का नाम था मर्डर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मदहोशी फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना मधोशी फिल्म से यह गीत, आवाजें थी उदित नारायण साधना सरगम की। आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति राजकुमार फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

आनंद बख्शी की लिखी शब्द रचना को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाजें थी अलका याग्निक, उदित नारायण की और फिल्म का नाम था राजकुमार। आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विवाह गीत फिल्म से ये गीत।

विवाह फिल्म में अभी आपने सुना श्रेया घोषाल, उदित नारायण की आवाज़ों को, गीत और संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का था। आपकी पसंद गीत हमारे इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं तलाश फिल्म का ये गीत।

अलका याग्निक, उदित नारायण के युगल स्वरों को अभी आपने सुना फिल्म तलाश में। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शीशा फिल्म का ये गीत।

देव कोहली की लिखी शब्द रचना को संगीत दिया था दिलीप सेन, समीर सेन ने आवाजें थी ऋचा शर्मा शहजाद की और फिल्म का नाम था शीशा। आपकी पसंद गीत हमारे इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहाँ वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व

अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।